वगैन खाइन दे थोरबु नने यार ने पता यूट्यूब में कोने ने ब्यूटीफुल दे ये दपोंग आरंग तमारो आ तमारो न पते दपोंग यो तक तने पोंग वोवी मेरो वरंग गादि मिनिस नकन दे द बोइनस तपन दे मेदर मान का खान दे न यार बुबुसी आने ने क्या तंगे रे पाना का तंगे यो ने मौरी एफएम 89.9 दे न मॉर्निंग आपोंग यो